0: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: आ कौन आ बिना गल्लो नहीं अखा जिया चाड़ी फिर दे

छड़ी ना दिखाओ। गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तो गई।

0: से चले होते तो आज ना ही तुम हंसते और ना ही हम रोते।
1: Your home for culture, community and unity here on CJMR 1320.

0: दादे दा हौसला ते दादी दी दुआवां ने सब दे पैर छू सका दुनिया ते जिन्नियां भी मामां ने। मेरे लिए दुनिया गोरी आ भावे मैं आप पक्के रंग दा हां, मैं भैणा लई इज्जत ते मामां लई दुआवां मंगदा ते मामां लई खैर मंगदा।
1: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

मत पूछो क्या क्या होता है मोहब्बत के बाजार में, ये दिन भी हमने देखे हैं प्यार में, अपनों ने रखा

तेरे जैसा किसी ने कहीं आज तक कोई देखा नहीं, तुझको पा लेने की अब किसी हाथ में कोई रेखा नहीं। तेरी आंखों का साहिल ही तो मेरी मंजिल है, तू मिल न मिल। तेरे होठों का तिल मुस्तकिल दिल का कातिल है, तू मिल न मिल। सारी दुनिया इसी सोच में ही मगन है कि तू कौन है, शाहजादियों को भी तुझसे जलन है कि तू कौन है।

0: नियाज हो तुम, मेरा नाज हो तुम, रब से मांगी मेरी वो अरदास हो तुम, कैसे छोड़ जाऊं मैं साथ तुम्हारा, खुदा से भी ज्यादा खास हो तुम।
1: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.

हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे।

0: तू फेर आ गया, तेनू पिछली बार कही गल याद नी।
1: साडा देख देख हाल हथ जोड़ी बैठा काल बंदे सारी ही रैकट विच एड़े ने मौलके नू वांगू परे सिर परचे।

0: थोड़े चाते बहुते दर्द जो दिल दे विच लको गया है। लै मां तेरा सियाने वर्गा पुत परदेसी हो गया है, परदेसी हो गया है।
1: This is CJMR 1320, the

0: कुछ तस्वीरें ही आप लोगों को दिखाते हैं। ये आज दोपहर तकरीबन 2 बजे की तस्वीरें हैं। इस गाड़ी में 2 युवक सवार थे। गाड़ी के शीशे चारों तरफ से काले थे।
1: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.